वेरी गुड मॉर्निंग कोलकाता, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, आपकी दोस्त सविता बारिश की बूंदों के साथ सफ़र करते करते आकर रुकी है FM रेनबो 107 पर। लेकर आई है आपके साथ नॉन स्टॉप गपशप। सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो।

0: दोस्तों, गुस्ताख मौसम में गुस्ताख दिल तो बहुत कुछ करने के लिए बेकरार है, और हम भी चाहते हैं कि आपके साथ नॉनस्टॉप गपशप में पूरा एक घंटा कुछ ना कुछ बेकरारी के साथ एक दूसरे की बात कहें और सुने। चलते हैं, हम बढ़ते हैं आज के सेगमेंट की ओर।
1: आज के दिन
0: दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सुनी कही जो कहानियाँ होती हैं ना, वो इतिहास का अंग कभी नहीं बनती, बल्कि हकीकत के फसाने बनते हैं इतिहास। तथ्यों, घटनाओं की कसौटियों पर कसी दास्तान ही इतिहास के पन्नों पर अंकित होती हैं, और जो बदल देती हैं पूरा का पूरा युग, और बन जाता है वही इतिहास। तो दोस्तों, ऐसे ही इतिहास को आपके

साथ साझा करने हम आ चुके हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप पर। 3 सितंबर के दिन वो कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जो जुड़ गई हमेशा के लिए इतिहास में। ईसा पूर्व 36 में इसी दिन नोलोचस का युद्ध लड़ा गया, जिसमें ऑक्टेवियन के एडमिरल मार्क्स विप्सानियस एग्रिप्पा ने सेक्सटस

0: की स्थापना की गई थी, जो आज भी अस्तित्व में दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य है। हाल में इतिहास में 3 सितंबर 1783 को पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अमेरिकी क्रांति युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। इस दिन घटी प्रत्येक घटना ने अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को आकार देने में योगदान दिया था, जो इतिहास की गतिशील प्रकृति को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास।
1: आज के दिन
0: जो हमने किया आपके साथ साझा, और आज के दिन क्या खास था हम ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनवाएंगे आपको कुणाल गंजावाला की आवाज में ये गीत।
2: There's something I wanna tell you, girl.

झूठ बोलते हैं। दोस्तों नॉन स्टॉप गपशप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभिनंदन है और आपकी दोस्त सविता आपके साथ जुड़ चुकी है कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में। बात हम करेंगे आज के दिन की, आज का दिन, जी हाँ, एक ऐसा लड़का 3 सितंबर 1926 को कोलकाता में जन्म लिया जिसने कि बंगाली सिनेमा को बना दिया, बंगाली सिनेमा को मिल गया एक महान नायक। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं आपके हमारे सबके प्रिय महानायक उत्तम कुमार की। दोस्तों उनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1926 को। महानायक बनने से पहले उत्तम कुमार क्या थे? वो एक क्लर्क थे, दफ्तर जाते थे, कागजों के बीच दिन काटते थे। उनके भीतर कहीं एक दूसरा जीवन उनका इंतज़ार कर रहा था, ये उन्हें पता ही नहीं था, और ये जीवन था सिनेमा का। शुरुआती दिन कुछ आसान नहीं थे, फिल्में नहीं चली, लेकिन कोई कोई जीवन का ऐसा साल होता है दोस्तों जो आपके जीवन में नया युग ले आता है और अचानक ऐसे दरवाजे खोल देता है जिसमें कि आपके लिए लगता है कि एक सुनहरा भविष्य इंतज़ार कर रहा है। उत्तम कुमार के लिए वो साल था 1953 का। उस साल फिर बंगाली सिनेमा ने एक ऐसी मुस्कान देखी जिसमें प्रेम था, संकोच था और अपने समय के आदमी की एक पूरी दुनिया थी। दोस्तों उन्होंने ना सिर्फ वो अभिनेता थे बल्कि निर्माता बने, निर्देशक बने, धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों में वो बढ़ते ही चले गए। ये उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, यदि वो होते तो 3 सितंबर को 100 साल के होते, लेकिन कुछ कलाकारों के लिए उम्र एक गिनती भर होती है। वे एक उम्र से निकलकर लोगों के बीच, लोगों के दिलों में बस जाते हैं और उत्तम कुमार उनमें से एक थे। उत्तम कुमार का जन्म 3 सितंबर को कोलकाता में हुआ। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार उत्तम कुमार ने हिंदी सिनेमा में भी खूब नाम कमाया। उत्तम कुमार का असली नाम अरुण कुमार चटर्जी था। एक्टिंग के साथ साथ वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर भी थे। फिल्मों में आने से पहले उत्तम कुमार ने कोलकाता कोर्ट में क्लर्क की नौकरी की, यहीं से उन्होंने थिएटर में एक्टिंग करना भी शुरू किया। दोस्तों महानायक उत्तम कुमार ने मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम किया, लेकिन उन्होंने कुछ चुनिंदा हिंदी फिल्मों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी।

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और बात हम कर रहे थे इस गाने को सुनवाने से पहले कि हमारे महान नायक उत्तम कुमार ने हिंदी की भी कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय की छाप छोड़ी। तो आज

0: आज हम नॉन स्टॉप गपशप में क्या बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम आप चाहें तो अपने महानायक उत्तम कुमार के विषय में कुछ, यदि उनके संस्मरण, कुछ उनकी बातें, कुछ उनकी जो अनुभव है उनके बारे में यदि आप साझा करना चाहें तो हमारे साथ जरूर कर सकते हैं। उनकी फिल्मों के बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपसे आज ज्ञान लेने वाली हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं, देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं लेकिन वो शायद हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। हेलो, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? उनकी लाइन कट चुकी है दोस्तों, और हम फिर से बात करेंगे। वो हमारे साथ हो सकता है कि जुड़ें दोबारा, लेकिन फ़िलहाल मैं बताऊंगी कि उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे कि छोटी सी मुलाकात 1967 में पद्मजा पंडित और शशिकला इस फिल्म में एक अभिनेत्री के रूप में थी। इसके अलावा उन्होंने काम किया मानुष 1974 में शर्मिला टैगोर, उत्पल दत्त के साथ। हमारे एक दोस्त जुड़ रहे हैं तो हम उनको पहले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अरूप बोल रहा हूँ।
0: अरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए, हाँ। कैसे है?
1: अच्छा है।
0: अच्छे है, और बताइए क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं कहना चाहता हूँ, बुरा ना माने उत्तम कुमार को सभी ठीक था, लेकिन हिंदी स्पीकिंग अच्छा नहीं था।
0: अच्छा,
1: इसलिए वो ज्यादातर ऊपर नहीं उठा
0: जी।
1: वो हिंदी हिंदी बात माने अच्छा बोलने से वो माने महान से आरो आरो महान हो जाएगा
0: जी,
1: हो जाता है
0: जी जी जी। तो लेकिन उन्होंने जितनी भी फिल्में हिंदी की वो काफी हिट रही।
1: हाँ, हिट रहे हिट रहे हिट, माने ये तो सही ठीक है, लेकिन माने उसका माने यही था
0: जी।
1: और तुमका उत्तम कुमार का फिल्म का एक किताब का गाना दीजिए ना, किताब का बहुत बढ़िया वाला गाना है किताब
0: जी। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं उनकी फिल्म का गीत आपको सुनवा सकूं, ठीक है?
1: ओके
0: ओके, थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े थे अरूप जी, और उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म का गीत मैं सुनवाऊँ, किताब फिल्म का मैं कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आनंद आश्रम का गीत सुनवा रही हूँ।

0: दोस्तों 1977 में आनंद आश्रम फिल्म आई। अमानुष की सफलता के बाद शक्ति सामंत ने उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को लेकर के दोबारा ये फिल्म बनाई। इसमें उन्होंने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। और जैसा कि अभी अभी हमारे एक दोस्त ने अरूप जी ने कहा, किताब फिल्म का गीत वो सुनना चाहते थे, तो 1977 में किताब फिल्म गुलजार द्वारा निर्देशित इस क्लासिक फिल्म में उत्तम कुमार ने निखिल गुप्ता नामक एक समझदार और गंभीर व्यक्ति का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने स्वाभाविक अभिनय की काफ़ी उनकी सराहना हुई थी। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं दीदी शोभिक शोकर बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: शोभिक जी, जी बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, आप?
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और फिलहाल बारिश हो रही है क्या बाहर?
1: ना, इधर पे तो बारिश नहीं हो रही है।
0: नहीं हो रही है? चलिए,
1: वो सुबह कुछ देर पहले 6 बजे में, जब उस टाइम में छोटा सा बारिश हुआ था उस टाइम में।
0: अच्छा, तो अभी आपको थोड़ी सी बारिश से मुक्ति मिली है ना?
1: दीदी दीदी, आप आज उत्तम कुमार के बारे में बात कर रहे हैं।
0: जी जी जी,
1: हिंदी फिल्म में बोले तो मैं बोलूंगा छोटे से मुलाकात, बहुत अच्छे से लगा था उसकी।
0: जी जी जी,
1: वो फ्लॉट नंबर 5 बोलिए, अमानुष जो फिल्म हुआ था, वो बांग्ला में भी हो, बंगाली फिल्म में भी हुआ था, हिंदी फिल्म में भी गया था, बहुत अच्छा सा। शर्मिला ठाकुर के साथ जो एक केमिस्ट्री जो था, बहुत अच्छा सा लगा था उस फिल्म
0: में। जी
1: जी, दीदी उत्तम कुमार के जो स्माइल जो है ना, बहुत अच्छा सा लगता था। हम लोग इस जेनरेशन में बोलेंगे तो हम लोग कुछ फिल्में देखा था, उत्तम कुमार के एक स्टाइल है, वो छोटा सा का जो एक स्माइल जो होता है ना, बहुत अच्छा सा लगता है। क्योंकि वो जो हम लोग जो बोलता है बंगाली में, भुवन भरा भरा हंसी जो बोलता है, ये जो बहुत अच्छा सा लगता है। आज 100 साल हो गया लाए, देखिए आज भी उत्तम कुमार सबके मन में है, क्योंकि एक अच्छा एक के बाद एक फिल्म किया था उत्तम कुमार से। एक बात मुझको जो सब कुछ सीखना पड़ेगा, देखिए उत्तम कुमार जब आया था, ये महानायक जब आया था, तब हर जो फिल्म जो था, जो जो जो फिल्म किया था, वो जो फर्स्ट जो फिल्म था, 4-5 फिल्म फ्लॉप हुआ था, उसके बाद भी हार नहीं माना है। उसके बाद जो फिल्म जो आया था एक के बाद एक, बहुत अच्छा सा वो फिल्म।
0: बिल्कुल, शुरू में उनको जो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी, तो उनको फ्लॉप मास्टर मान लिया गया था।
1: दीदी फ्लॉप मास्टर मान लिया था, किंतु उसके बाद देखिए घूम कर, वो जो 36 डिग्री घूम कर, एकदम एक के बाद एक बंगाली का मन में एक के बाद एक फिल्म।
0: और उनकी जो पर्सनैलिटी थी ना ओवरऑल, वो मतलब वो हम कहें तो फिल्मी इतिहास में बहुत कम लोगों की हुई है, है ना? उनका जो कद काठी, स्माइल उनकी, उनके चेहरे पर भोलापन, एक संकोच, जो उनकी हंसी कातिलाना जिसे कहते हैं ना, उनकी हंसी में एक कातिलानापन था। तो
1: क्योंकि दीदी देखिए जो नायक में आप लोग जगह पैंट शर्ट पर कभी भी उन

0: तो में धोती पंजाबी पहन कर जो एक जो भुवन जो एक साधारण मानस की तरह जो एक मिस्ता था एक जो चोरी तो कैसे तरह से जो होगा उसमें घुस जाता था उत्तम कुमार
1: बिल्कुल
0: ऐसी तरह से हम लोग का मन जय कर लिया है मैं ही बोलूंगा दीदी
1: सही बात है तो शोभिक जी आपने उनके बारे में इतनी सारी बातें हमें जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू तो दोस्तों अभी अरूप जी ने किताब फिल्म का गीत सुनना चाहा था तो मैं सपन चक्रवर्ती की आवाज़ में ये गीत सुनवाती हूँ फिर मैं और भी आपको आपके कॉल लूँगी तो आप जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ सकते हैं

दोस्तों उत्तम कुमार की बतौर मुख्य अभिनेता पहली बड़ी हिंदी फिल्म थी छोटी सी मुलाकात 1967 में, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बांग्ला फिल्म अग्नि परीक्षा की रीमेक थी, जिसमें उनके साथ बैजंती माला मुख्य भूमिका में थी। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन द्वारा बेहद लोकप्रिय हुआ। दोस्तों आपको मैं सुनवाना चाहूंगी इस फिल्म का गीत छोटी सी मुलाकात का।

0: दोस्तों 1979 में उत्तम कुमार की एक फिल्म और आई, दूरियां। जी हाँ, शर्मिला टैगोर के साथ उन्होंने एक बार फिर इस फिल्म में काम किया। ये एक मैच्योर पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें महानगरीय जीवन और आपसी रिश्तों के तनाव को बखूबी दिखाया गया और उत्तम कुमार ने इसमें बेहतरीन अदाकारी की। दोस्तों बात हम उत्तम कुमार की कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त भी जुड़ रहे हैं, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो,
1: जहाँ जाता हूँ होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
0: जी चंचल जी, स्वागत है आपका। आपके बिना भी ये जो शो है ना अधूरा है। बताइए कैसे है।
1: आपके प्रोग्राम में तो हम अपने को रोक नहीं पाते हैं, इसीलिए चले आते हैं।
0: जी चलिए, आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: धन्यवाद आपको। मैं अमानुष फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ।
0: हाँ।
1: कि परसों पहले मैंने ये पिक्चर देखी थी, तो इसका हिंदी और बंगला भी है।
0: हाँ।
1: तो मैंने प्रथम बार जो बंगला में अमानुष को देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी
0: जी,
1: और हिंदी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बल्कि बंगला को मैंने ज्यादा पसंद किया। और इसमें एक चरित्र अभिनेता थे अनिल चटर्जी, जो इंस्पेक्टर का रोल किया था उनने, इन दोनों की जुगलबंदी जो काम की थी बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये तो उत्तम कुमार जी तो बंगाल की बीच की धड़कन है
0: जी, बिल्कुल
1: पसंद करते। अभी भी मैंने जब अपने रिश्तेदारों के पास जाता हूँ तो उत्तम कुमार की तस्वीर घर में मिलती है मुझे, बड़े उनसे फूल की माला लगी हुई है, उनको पूछते हैं लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उनको लोगों के दिल में नहीं, दिल में बसे हुए हैं वो।
1: हाँ
0: जी चंचल जी, आपने अमानुष की बात की तो मैं अमानुष का ही एक गीत सुनवाना चाहूंगी आपको, ना पूछो कोई हमें, या दिल ऐसा किसी ने, कौन सा सुनना चाहेंगे बताइए
1: आप। आपको अगर समय रहे तो छोटी सी मुलाकात का वो गाना सुना दीजिए, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।
0: जी कोशिश करूंगी।
1: ये गीत मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ हमारे बाली में किशोरदा है, किशोरदा के लिए ये गीत मैं बजाना चाहता हूँ और सभी लोगों के लिए। आप भी सुनिए, बहुत मजा आएगा
0: जी। शुक्रिया,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया।

0: ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और दोस्त, तो हम उनको लेते हैं पहले। हेलो हेलो, क्या सुना है? हम समझ नहीं पा रहे, आप बताइए। उत्तम कुमार के बारे में आप कुछ बोलना चाह रहे
1: हैं?
0: आपका नाम बताइए।
1: अनंत माठाल। अनंत माठाल।
0: अनंत माठाल। और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दक्षिण चौबीस परगना।
0: अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही, माफ़ कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपकी फरमाइश पूरी करना चाहूँगी, ठीक है? थैंक यू। तो ये दोस्त हमारे जुड़े थे, लेकिन समझ नहीं पाई मैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। दोस्तों, उनकी एक फिल्म और आई थी दूरियां 1979 में। इस फिल्म में उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर ने एक बार फिर साथ काम किया। ये एक परिपक्व, ये इस फिल्म के बारे में हमने अभी अभी बात भी की आपसे, लेकिन उसका गीत आपको नहीं सुनवाया मैंने। दूरियां फिल्म का गीत मैं आपको सुनवाऊं, लेकिन इससे पहले हमारे एक और दोस्त का कॉल आ गया है, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
3: जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, आप कौन बोल रहे हैं?
3: जी सविता जी, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम बताइए।
3: जी मैं पारस पंडित चुजरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: बिल्कुल पारस पंडित जी, मैं आपका नाम याद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आपकी आवाज पहचानी लग रही थी मुझे।
3: हंस दीजिए।
0: जी जी जी बिल्कुल, बताइए। तो
3: आज बंगाल के महानायक उत्तम कुमार जी का 100वां जन्म शतवर्ष है
0: जी।
3: तो उनको उनको शुभेच्छा एवं अभिनंदन। तो उत्तम कुमार जी तो महानायक थे ही, बंगला पिक्चर के एकदम महानायक। और उनकी बंगला हिंदी बंगला पिक्चर तो मैंने देखा ही है, छब्बीस हुआ, एंटनी फिरंगी हुआ, और उसके अलावा देना पावना हुआ, अमानुष हुआ, अगोबोध सुंदरी हुआ, ये सब पिक्चर है। बहुत ही मतलब बेहतरीन एवं उम्दा मतलब अभिनय
0: जी।
3: इन सब पिक्चरों को मैंने हॉल में नहीं देखा, लेकिन पहले मतलब दूरदर्शन पर ये पिक्चर है, शनि और रविवार को देता था, तो अभी देखता हूँ
0: जी।
3: और हिंदी पिक्चर में कुछ इन्हे गिने ही पिक्चर किए हैं, जैसे आपने जिक्र कर ही दिए हैं, दूरियां हुई, छोटी सी मुलाकात हुई, उसके बाद और एक पिक्चर के बारे में आपने नहीं बोला, वो है देश प्रेम।
0: जी हाँ, उसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी, जिसके बारे में मैं बोलने वाली थी जी।
3: हाँ, देश प्रेमी में सहायक भूमिका निभाए थे।
0: हाँ,
3: तो वो भी बहुत ही उम्दा था
0: जी।
3: और उनमें चार कलाकार थे, परीक्षित साहनी और प्रेमनाथ। प्रेमनाथ और अमिताभ बच्चन जी के साथ थे।
0: बिल्कुल।
3: तो और उनके बंगला पिक्चर में शायद अंतिम पिक्चर था ओगुबोध सुंदर। और दो हिंदी पिक्चर था जिसका बंगला में भी हुआ था, एक हुआ अमानुष और दूसरा हुआ आनंदा
0: जी।
3: जी
0: तो ये आपने इतनी सारी जानकारी दी पारस पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: आप अंत में एक देश प्रेमी का गाना सुना दीजिएगा, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का फंदा फेंको।
0: अच्छा।

0: दूरियां फिल्म का गाना निकाल के रखा था, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ।
1: अच्छा ठीक है, प्रणाम नमस्कार, फिर आपसे बातें होंगी।
0: तो दोस्तों हमारे साथ दोस्त जुड़े और देखिए बात करते करते 10:56:30 हो चुके हैं। उत्तम कुमार की 100वीं जयंती 30 सितंबर को मनाई जा रही है और विभिन्न जगह इनका उत्सवों का शुभारंभ होगा। एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभिनेता उत्तम कुमार और बंगाली सिनेमा से जुड़े प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं उनका सम्मानित किया जाएगा। कोलकाता का सांस्कृतिक परिसर नंदन, जो बंगाली सिनेमा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, वहाँ पर भी उत्तम कुमार के कैरियर से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरों, पोस्टरों, यादगार वस्तुओं और अन्य सामग्रियों की प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। वहाँ फिल्म विद्वान, शोधकर्ता, कलाकार और आलोचक भी अभिनेता के जीवन के कार्यों पर चर्चा करेंगे, साथ में एक साथ आएंगे। तो दोस्तों बात उनके बारे में और भी बहुत कुछ करने की थी, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। फ़िलहाल मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मुलाकात हमारी 11:10 पर होने वाली है। प्यारे लाल जी के संगीत के विषय में हम बात करने वाले हैं। चलते चलते आपके लिए मैं फिल्म दूरियां का गीत सुनवा रही हूँ, देश प्रेमी गीत की मुझसे कई लोगों ने गुजारिश की, लेकिन फिलहाल वक्त नहीं है वो गीत सुनवाने का, तो माफ़ कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।

0: countries, as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: 107 FM Rainbow presents Pariyojana Prastuti. Pariyojana Prastuti. Sarkari Udyam Tarakki Samaj Ki. Pariyojana Prastuti. Pariyojana Prastuti.
3: नमस्कार दोस्तों, आज आपकी अपनी आरजे सुलक्षणा पर्वत लेकर आई है विशेष कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति। और आज मैं बातें साझा करूंगी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित। श्रोताओं, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 13 से 15 फरवरी 2024 के बीच में की गई थी। इस प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को रोशन करना और उन्हें सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाना। योजना के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वो भी मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। जैसे कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली इस योजना के तहत मतलब जो है प्रत्येक परिवार जो है उसे हर महीने 300 यूनिट तक का जो है मुफ्त बिजली दी जाती है। सब्सिडी की सुविधा है। छत पर सोलर पैनल, रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए सरकार का जो लागत है वो 40% से 60% तक सब्सिडी दी जाती है। अतिरिक्त आय की बात करूं तो घर की जरूरत के बाद बची हुई अतिरिक्त बिजली को ग्रिड बिजली विभाग को बेचकर परिवार कमाई भी कर सकते हैं। बजट और लक्ष्य की बात करूं तो इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है, जिससे 1 करोड़ घरों तक लाभ पहुंचाने का जो है लक्ष्य है। और पर्यावरण की रक्षा की भी बात आती है। सौर्य ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और हरा भरा पर्यावरण बनेगा। और थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम 3 का तड़का। तो फिलहाल आपसे आज्ञा चाहती हूं इस कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति से, और जुड़े रहिएगा, साथ रहिएगा 107 एफएम रेनबो पर सुनने के लिए कार्यक्रम 3 का तड़का।
2: परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति। सरकारी उद्यम तरक्की समाज की। परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।

0: म्यूजिकली योर्स पर आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है। आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत खैर मकदम करती है, आपका वेलकम करती है इस प्रोग्राम में, जिसे वो अपने अंदाज में कहती है ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम, तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 3:13 और इस वक्त आपने ट्यून करके रखा है दिल से दिल तक वाला चैनल यानी कि 107 एफएम रेनबो कोलकाता का दी रियल रेडियो और कार्यक्रम सुन रहे हैं 3 का तड़का #दिल धड़का अपनी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और जैसा कि आप जानते हैं

हैं कि हाँ तीन का तड़का मतलब थोड़ा स्पाइसी होता है, तड़का पड़ेगा तो स्पाइसी होगा ही। और आज कौन सा स्पाइस डालने वाली हूँ ये भी मैं बताऊंगी कि हाँ आज के तड़का में कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ। बाय द टाइम आप सोचेंगे कि मैं क्या बताऊंगी, तब तक बता दूं आपको, पहला गाना आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म 21 से, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स। और ऐसा है कि

और इस फिल्म में कलाकार जो हैं वो हैं पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा। तो जो इन कलाकारों के फैंस हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले भाई, आप तो पहला ही शो देखना चाहेंगे। वैसे चॉइस इज योर्स बट वी आर म्यूजिकली योर्स। अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म अंधाधुन से अभिजीत श्रीवास्तव और अमित त्रिवेदी की आवाज में,

आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो हो जाए पार्टी ऑन माय माइंड। जी हाँ, पार्टी ऑन माय माइंड के शिफाली और यो यो हनी सिंह की आवाज में सुनेंगे फिल्म रेस 2 से। और उसी के साथ आपको बता दूं कि 4 सितंबर के बारे में तो बता दिया कि मिर्जापुर द मूवी रिलीज हो रही है, और 11 सितंबर 2026 को रिलीज हो रही है हैवान। और इसमें जो आर्टिस्ट हैं वो है अक्षय कुमार, सैफ अली खान। और फिलहाल पार्टी ऑन माई माइंड।

18 सितंबर 2026 को रिलीज होगी फिल्म दायरा, और इसमें जो आर्टिस्ट है वो है करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन। और क्या है कि इसके बाद बता दूं कि 18 तारीख को जो है एक नहीं बल्कि दो दो फिल्में रिलीज होने वाली है, और दूसरी जो फिल्म है वो है अनुभूति। कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा इसमें जो है लीड रोल में है। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कब कौन सा फिल्म आपको देखना है, घर में देखना है या थिएटर में देखना है, या फिर फ्रेंड्स के साथ देखना है या फैमिली के साथ देखना है। चॉइस इज योर्स। बट अगला गाना आप सभी के लिए कॉकटेल 2 से कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाज में।

0: হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তদের জানাই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসবে সাদর আমন্ত্রণ। উৎসব স্থান ইসকন নিউ টাউন কলকাতা সাপুজি বাস স্ট্যান্ড, 2 সেপ্টেম্বর থেকে 5 সেপ্টেম্বর 2026।
1: स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 3:25 और 40 सेकंड। और आपको बता दूं श्रोताओं की ऐसा है कि 3:30 से 4 बजे तक आपके लिए रहेगा स्पॉन्सर प्रोग्राम NCERT का। और फिलहाल बाय द टाइम जो समय बचा है आपके और मेरे बीच इस कार्यक्रम 3 के तड़का में, तो इसमें क्यों ना हो जाए मस्त मगन वाला गाना। 2 स्टेट्स फिल्म का नाम है, अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीप्रदा की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। लिरिसिस्ट हैं अमिताभ भट्टाचार्य और कंपोजर हैं शंकर ईशान लॉय। और इस गीत को सुनते सुनते मुझे आज्ञा दीजिएगा, बट चलते चलते यही कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। वैसे बता दूं इसी चैनल पर शाम को 7:02 से लेकर 8 बजे तक रहूंगी लेकर कार्यक्रम नजारा फिल्मों का।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
0: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओ, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओ, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूरदराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
2: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया।
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
2: श्रोताओ, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना

0: हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात। विमलेश जी, मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
1: जी,
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली
1: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यू शेराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है।

0: माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, पर मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।
3: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है, ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
4: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
5: 2 मैं शरद हूँ।
6: और मैं सुचित्रा हूँ।
5: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
6: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
5: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
6: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
5: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
7: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
8: नहीं नहीं,

0: सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
1: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
0: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
2: ना जाने क्या होगा इसका।
0: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
2: अरे वो सब तो ठीक है, पर
0: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
3: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
4: ऐसे कैसे?
5: जोर से मारना।
4: सैम, है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं। सैम, है ना? क्या तुम लोग तैयार हो?
5: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
4: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग। कैसा प्रयोग? आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
5: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
4: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
5: अच्छा
4: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
0: अच्छा।
4: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
5: ठीक है।
4: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
0: घंटी भी?
4: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
4: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
6: हाँ हाँ।
4: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
6: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
5: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है!
6: अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
5: अरे ये तो जादू की तरह लगता है।
0: वाह,
5: क्या बात है! अरे वाह,
4: सिग्नल मिला?
5: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
3: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
7: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
3: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा, ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
4: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है।

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह, रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है,
0: वाह, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: वाह।
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकरा।

0: क्या है?
1: अरे अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो डैम की ओर भागो।
2: ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है।
3: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज बुरी तरह हिल रहा है।
1: हेडकोर्ट कितनी बड़ी खराब पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी बचाओ।
4: जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर। जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
0: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
4: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प लाइफ सिग्नल भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
3: जल्दी जल्दी करो।
4: जीवन रक्षक नावों के नीचे उतारो। लाइफ बोट उतारो। लाइफ बोट को नीचे उतारो।
5: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
6: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
7: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
6: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: डायरेक्टर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो विश्वास नहीं होता।
3: मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए, ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
6: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: बिल्कुल।
6: धन्यवाद।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यम

0: मुहिमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
1: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। नजारा फिल्मों का।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 FM रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक गुरुवार की शाम आपके लिए रहता है। क्या नजारा फिल्मों का। सबसे पहले मैं जो गाना प्ले करूंगी बता दूं कि उस गाने की शूटिंग कहाँ हुई थी। फिल्म का नाम है कॉकटेल, रिलीज हुए थे इन द ईयर 2012 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और गाने के बोल थे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। इस गाने की शूटिंग लोकेशन के बारे में कहूँ तो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित मेडन्स कोव बीच पर शूट किया गया था और इसमें जो लीड रोल में थे या फिर जो कलाकार थे वो थे सैफ अली खान गौतम के किरदार में, दीपिका पादुकोण वरुणिका के किरदार में और डायना पेंटी मीरा के किरदार में। और चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं छायालोक कार्यक्रम नजारा फिल्मों का विद दिस सॉन्ग तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में सुनते हैं इस गीत को।

वैसे बता दो दोस्तों कि ये गाना जो है ना, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही सखा हो, तुम्ही दिन चढ़े, तुम्ही दिन ढले, ये 107 एफएम रेनबो पर भी बहुत अच्छा जो है इस गाने के लिए ये गाना जो है फिट बैठता है। और वैसे हम बता दें कि ये जो दिल से दिल तक वाला चैनल है ना, रहता है आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट, म्यूजिकली योर्स है। और अब आपको बता दूं कि ये गाना आपने सुना फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में, गीतकार अरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन सी फिल्म का गाना आपको लिए प्ले करूंगी, उसके साथ साथ ये भी तो बताना लाजमी है कि इस गाने की शूटिंग कहाँ हुई थी और इसमें कलाकार कौन थे, ताकि ये जब सारी जानकारी मिलती है ना तो काफ़ी स्पाइसी हो जाता है और सुनने का मन करता है। और अगर आपने वो गाना नहीं देखा होगा, फिल्म नहीं देखा होगा, तो देखने की भी इच्छा होगी। और बता दूँ कि 1979 में एक फिल्म रिलीज हुई थी सरगम, और सरगम के प्रसिद्ध जो गाना था उसमें डफली वाले डफली बजा की शूटिंग जो है ना वो श्रीनगर में, श्रीनगर कश्मीर में परी महल में हुई थी। मुख्य कलाकार हीरो हीरोइन की बात करूं तो ऋषि कपूर हीरो थे और हीरोइन जयप्रदा। वैसे इसके साथ ये भी बता दूं कि ये जयप्रदा जो उन्होंने अभिनय किया था इस फिल्म में, ये इसी फिल्म से इन्होंने डेब्यू किया था बॉलीवुड में। सो अगर आप भी साथ में गाना गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं और डांस करना चाहते हैं, तो उसकी छूट है, कर सकते हैं।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 7:16 और 54 सेकेंड और फिलहाल आप जुड़े हैं दिल से दिल तक वाले चैनल पर यानी कि सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की दी रियल रेडियो 107 FM रेनबो पर और कार्यक्रम सुन रहे हैं नजारा फिल्मों का विद आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है दोस्तों कि अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म, ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी इन द ईयर 1983, सुपर डुपर हिट फिल्म थी हीरो। और इस फिल्म का जो बहुत ही लोकप्रिय पॉपुलर सॉन्ग था तू मेरा हीरो है की शूटिंग मुंबई के मनोरी इलाके में हुई थी। और कलाकारों की बात करूं तो इस गाने में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक सुभाष घाई थे और इस गाने को अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के आवाज में आप सुनेंगे उन्होंने गाया था। और इस गाने के पीछे की बात एक बताना दिलचस्प तथ्य जो है वो आपसे साझा करना चाहूंगी, जो कि मीनाक्षी शेषाद्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस गाने की शूटिंग के दौरान उनके पैरों में कांटा चुभ गया था, फिर भी उन्होंने दर्द के बावजूद अपना शूट जारी रखा था। यही होता है डेडिकेशन काम के प्रति, और शायद तभी हम कहते हैं वर्क इज वर्शिप।

अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म लम्हे से, और लम्हे के प्रसिद्ध गाना जो है मेघा रे मेघा की। शूटिंग के दौरान सबसे खास बात ये थी कि यश चोपड़ा ने इसे कृत्रिम नकली बारिश में फिल्माने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ अचानक आसमान से असली बारिश होने लगी थी। शूटिंग से जुड़ी खास बात जो है वो तो यही थी कि ये जो चमत्कार था वाकई में, मतलब सेट पे जितने लोग थे बहुत खुश हुए थे, और राजस्थान के मांडवा में पानी के टैंकरों से नकली बारिश का इंतज़ाम जो किया गया था वो बस धरा का धरा रह गया था, क्योंकि कुदरती तौर पर जो तेज़ बारिश शुरू हुई वो गाने को जो है उसमें एक और ही एक एडेड क्या कहे USP ऐड हो गया था उसमें। इस जादुई और अप्रत्याशित पल को देखकर निर्देशक यश चोपड़ा ने तुरंत कहा कि कैमरा चलने दो, क्योंकि ऐसे पल दोबारा बनाए नहीं जा सकते। तेज बुखार में श्रीदेवी ने शूटिंग की।

अभी मुझे भी कुछ बताना है, और बताना ये है कि 7:30 बजे से आप ये कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुन सकते हैं, और 7:30 बजे इसलिए क्योंकि दुबई में भारत और हांगकांग के बीच खेले जा रहे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 की बायलिंगुअल ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे खेल के अंत तक ट्रांसमीटर पर। तो 7:30 बजे से आप सुनेंगे ये कार्यक्रम ऐप पर। और फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए सुनिधि चौहान की आवाज़ में

इस खूबसूरत गीत को आपने सुना सुनिधि चौहान की आवाज में, फिल्म चमेली से लिरिसिस्ट इरशाद कामिल, कंपोजर संदेश शांडिल्य। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि अगला गाना जो है ना वो हमने लिया है फिल्म कहूं ना प्यार है से। गीत के बोल है प्यार की कश्ती में, और इस गाने की शूटिंग जो हुई थी वो चलते हुए क्रूज लग्जरी जहाज पर श्रीलंका से बैंकॉक के बीच समुद्र में हुई थी। और ऐसा है कि ये जो गाना है, लीड रोल में नजर आए थे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल, और डेब्यू किया था, सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और इस गाने के क्रूज वाले हिस्से को स्टार फ्लायर नामक क्रूज पर शूट किया गया था, जो श्रीलंका से बैंकॉक तक समुद्र की यात्रा करते हुए फिल्माया गया था। और

इसके अलावा फिल्म के अन्य हिस्से और गानों की शूटिंग क्रेबी और जेम्स बॉन्ड आइलैंड जो है वो थाईलैंड में है और न्यूजीलैंड में कुछ जगहों पर जो है उसकी शूटिंग हुई थी। तो देर न करते हुए फिल्म कहूँ ना प्यार है से अगला गीत। ये भी बता दूँ साथ में कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रागेश रोशन ने।

कार्यक्रम छायालोक में सेगमेंट गुरुवार का सेगमेंट नजारा फिल्मों का इस वक्त 7:30 बजे से आप सुन रहे हैं ऐप पर. और अगला गाना जो है उसे हमने लिया है फिल्म जब वी मेट से. और इस गाने के जरिए जो भी गाना सुनेंगे उसके जरिए हम आपको ले चलेंगे शिमला हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के शिमला में अगर ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा. इस गाने के मुख्य दृश्य जो है सिल्मा के शिमला के मशहूर मॉल रोड और रिज के आसपास फिल्माए गए थे. और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में, गीतकार इशाद कमिल और संगीतकार संदेश शांडिलिया.

फिल्म चांदनी ये रिलीज हुई थी इन द ईयर 1989 के प्रसिद्ध गाने तेरे मेरे ओठों पे मीठे मीठे गीत मितवा इसकी शूटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड में लंगन लेक के आसपास जो है उसके इलाके के आसपास हुई थी और बहुत ही खूबसूरत गाना है, काफ़ी हिट हुई थी फिल्म भी और गाना भी। और इसके साथ ही बता दूं कि ये जो है एक बहुत ही रोमांटिक गाना था और इसके कुछ दृश्य जो थे वो स्विट्जरलैंड के एल्पाइन पर भी शूटिंग हुई थी इसकी। और अब आपको बता दूं अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म कृष्णा से और प्रसिद्ध गाना है वो कृष्णा है। इसकी शूटिंग मुख्य रूप से रानीखेत उत्तराखंड और उसके आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में की गई थी और सुभाष घई ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। संगीतकार इस्माइल दरबार। और इसी के साथ एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देनी है आपको, वो ये है कि कल यानी 4 तारीख को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर जो है आपके लिए विशेष कार्यक्रम रहेगा, जो कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुन सकते हैं आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल यानी कि मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। तो ये कार्यक्रम 9:10 पर कार्यक्रम रसधारा में आप सुनेंगे और बहुत ही स्पेशल विशेष कार्यक्रम है तो सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी के साथ आपसे आगे लेती है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, नमस्कार, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी, लेकिन आप जुड़े रहिए।

0: बने रहिए दिल से दिल तक वाले चैनल पर, यानी कि 107 एफएम रेनबो पर।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

आणमुष्कर सात मिनट स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सही बात है, बिल्कुल मैं भी वही करना चाह रही थी। तो आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम छायलो पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक। फिलहाल आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर। हमारा और आपका साथ बना रहेगा अगले 9 बजे तक, तो सुनते रहिए, साथ रहिए और कहीं मत जाइए, क्योंकि बेहद खूबसूरत नगमे आप सब तक पहुंचाने वाली हूं।

8:14 और गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं विशाल और शेखर, आवाज पापुन की और फिल्म का नाम सुल्तान। और इसके पहले आपने जिस फिल्म का गाना सुना था स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, वो था टाइगर जिंदा है। अब इन दोनों फिल्मों में एक बात कॉमन है, वो क्या है? वो है सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान की जो फिल्में होती हैं ना, आमतौर पर उसमें आप सबने इस बात को नोटिस किया होगा कि उनकी जो फिल्म होती है ना उसके गाने बड़े खूबसूरत होते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा कैसे? तो उसके पीछे काफी सारी खास बातें हैं जो आज मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले यह खूबसूरत नगमा उन्हीं के फिल्म से। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ अगले 9 बजे तक यूं ही बने रहिए ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

22 मिनट। और सलमान खान की फिल्मों की ये जो संगीत है, ये जो खूबसूरत गाने हैं, वो आखिर इतने अच्छे क्यों होते हैं? तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि खुद सलमान खान की भी संगीत में रुचि है। सलमान खान का फिल्मों के संगीत से गहरा जुड़ाव रहता है। वो खुद गानों के, वो किस तरह के गाने होंगे, उनके धुनों और बीट्स में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। कई बार उन्होंने फिल्मों के लिए खुद गाने भी गाए हैं, जैसे कि जग घूमिया का अनप्लग्ड वर्जन या फिर हैंगओवर। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले यह खूबसूरत नगमा उन्हीं के फिल्म से आप सब तक पहुंचाऊंगी। सुनते रहिए, साथ रहिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

तो आखिर सलमान के फिल्मों के गाने इतने अच्छे होते क्यों हैं? पहला कारण तो बता ही चुकी हूं, और दूसरा है कि संगीतकारों और गायकों के साथ उनका बेहतरीन तालमेल होता है। उनके करियर में नदीम श्रवण, जतिन ललित, हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद और देवीश्री प्रसाद जैसे दिग्गज संगीतकारों ने उनके लिए सदाबहार संगीत तैयार किया। इसके अलावा एसपी बाला सुब्रमण्यम से लेकर कुमार शानू, उदित नारायण, अरिजीत सिंह तक उनकी आवाज का जादू सलमान की स्क्रीन प्रेजेंस के साथ काफी फिट बैठता है।

8:43। अब सलमान खान के फिल्मों के जो गाने बड़े अच्छे होते हैं, सूदिंग होते हैं, उनका एक रीज़न तो उन्हें खुद संगीत में रुचि है, दूसरा संगीतकारों और गायकों के साथ बेहतरीन तालमेल है, और तीसरी जो बात है वो ये कि सलमान खान के गानों में कुछ ऐसे सिग्नेचर स्टेप्स होते हैं जो आम जनता और उनके फैंस के बीच तुरंत फेमस हो जाते हैं, जैसे कि जुम्मे की रात, जीने गए चार दिन, या फिर ओ ओ जाने जाना। इससे गानों की जो लोकप्रियता है ना, कई गुना बढ़ जाती है। तो बस ऐसे ही एक लोकप्रिय गाने को आप सब तक पहुंचा देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:55 और पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय बाय।